0: लोग ये भी कहते हैं अगर आप गर्मी के आगे आगे नहीं जाओगे तो आपका स्किन अच्छा रहता है. वैसे हमारा स्किन टच छोड़ कुछ महीनों से काफी काफी काफी अच्छा रहा है एंड काफी लोग हमें मैसेज भी कर रहे हैं. सो डू ट्राई टच एंड ग्लो बिकॉज वी आई डू थिंक के रेगुलर फेशियल्स या रेगुलर मैसेजेस नॉट केमिकल ones is really good for your skin to clean it and cleanse it and kya bolte hain usko yaar wo jo scrub ha scrub karna kafi acha hota hai.
1: Piyush bhai aap kal kahan the, aapka hum intezar kar rahe the, antakshri mein aap team lekar aane wale the, aapka bhi hum swagat karna chahte hain. Arvina, you also welcome. Dilangam Pillai ji lamba sa hai hamare sath shamil ho chuke hain.
0: Sanjeev ji, without any hesitation, bina koi jhijak ke, bina koi sharam ke, hum ye keh sakte hain ki Krish ji hi ghar pe khana banate hain, Krish ji hi ghar क्लीन करते हैं, क्रिश जी ही घर पे बच्चों को देखते हैं. एंड आपको उसमें कोई तकलीफ है?
1: बिल्कुल नहीं. आपको देख रहे हैं स्किन का डिफरेंस, देखिए ना, जो चूल्हा के पास आता है उनका स्किन देखिए और जो चूल्हा के सामने उनका स्किन देखिए. आई एम प्रीटी श्योर सोनी इज लाफिंग वाचिंग दिस राइट नाउ. रोजलिन जी फिजी में नरियल, नरियल के फोटो भेजो एक. नरियल नरियल नरियल एंजॉय. आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो एंड एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम. आई थिंक इंडिया के ग्लो दिख रहा है. इंडिया नहीं, हॉलीडे का
0: हॉलीडे, एक हॉलीडे का ग्लो. हमें यार कोई ना ऐसे पैसे दे दे
1: बाबू का मैसेज.
0: बाबू कहाँ पे?
1: अभी अभी सामी,
0: अभी सामी कह रहे सिद्ध आशिका न्यू
1: विकी,
0: विकी न्यू नेम फॉर हिम इज ब्लॉन्ड
1: ब्लॉन्डी
0: Blondie,
1: Blondie. Yeah. Hey, Blondie. Oh, please tell me, Vicky ने अपना बाल वैसा नहीं कराया. प्लीज अगर कराया होगा मैं कोशिश करके हंसूंगा नहीं. मैं
0: अगर कराया तो इसमें एक फोटो भेजिए, हम भी देखना चाहेंगे कि वो कैसे.
1: बाबू बाबू सेंड अ फोटो ऑफ यू गाइस सर. इज दैट व्हाई आई से दिस ब्लैक टू
0: सेम पिंच कृष्णा. क्या कि आप भी घर पे कुकिंग नहीं करते हो और आपका स्किन भी अच्छा है? आई नो कि लास्ट टाइम साधना आंटी ने इतना अच्छा बरा बनाया था कि हमें बहुत अच्छा लगा था.
1: पिछले वीक पूरी भी बनाया था ना ये बेचारी. आपको पता है हमारे यहाँ पर फिजी में एक स्टोरी बता देते
0: जी.
1: पर ये स्टोरी में पिग्स हुआ करते थे,
0: भुंड
1: भुंड हाँ भुंड भुंड हाँ. तो इसमें क्या होता था कि दो पिग्स होते थे
0: जी.
1: ये रोज साथ में काम करने जाते थे खेत में. तो दोनों काम करते करते उनका यू नो एक उसमें से बहुत काम करता था. हाँ शरीर यू नो उसका शरीर मिट्टी में एक काम करता था, दूसरा पेड़ के नीचे आराम करता था. पर आते समय जो आराम करता था उसको बोलता था तुम घर पे ऐसे जाओगे जाकर नहा लो. तो वो जाकर नहा लेता और जो पेड़ के नीचे था ये जाते समय जाकर मिट्टी में लौट लेता था. तो ऑनर को क्या लगता था कि सारे काम जो पेड़ के नीचे बैठा था उसने किया. तो आई फील ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ, रिसेंटली आई फील लाइक कि सोनी शर्मा के साथ ये हो रहा है क्योंकि पूरी का मिक्स ये करते हैं, बरहा का ये करते हैं, बना कोई और देता है, क्रेडिट कोई और लेकर जाता है.
0: आप बड़ा सोनी दी को सपोर्ट करते
1: हैं.
0: आपने ये नहीं देखा था कि पूरी वहां पर गरम गरम तेल में जो तल रहा था इंसान अपना स्किन केयर सब कुछ भूल के, आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो किसने किया था. इमेजिन वो गरम तेल का भाप जो हमारी शक्ल पे आ रहा था. आप ये भी सोचा करो कभी हमेशा सोनी दी के सपोर्ट में रहने से अच्छा.
1: सोनी जी करते सीमा टिकटॉक देखेंगे, जरूर देखेंगे. और मनमोहन सिंह जी, भाई जी आपका बहुत ही प्यारा पर्सनल मैसेज आया था लास्ट वीक, धन्यवाद हाथ जोड़कर. आप जैसे लोगों का प्यार और आशीर्वाद है इसीलिए हमें प्यार और आशीर्वाद के बारे में बात करते हैं. जी जी अंशु आंटी जी, अंशु रियल फूड आइसक्रीम जी. हाँ बिल्कुल, आपके घर पे भी कोई फंक्शन है तो आप इनको याद कर सकते हैं. इनके साथ साथ पोतीचोर जहां से खरम ने एक दो वीडियो डाला है, वेट फॉर इट, इनका एक अच्छा प्रॉपर वीडियो आने वाला है. इसके साथ साथ एम सी किया, मनीष कम्युनिटी किया, लॉरिन मुनी, जुली मनी जी और रॉबर्ट अन्ना जी, थैंक यू. फ्राइडे शोज के साथ साथ आप हमारे संडे शोज में भी आ गए. जी जी
0: कह रहे हैं कि जीपी जी ने इतनी प्यारी धमकी दी है. हम हर चीज बड़े प्यार से करते हैं यार पीयूष जी. और
1: बहुत डर लगता है
0: एक चीज है, हम ना कोई कुछ बोलता है तो हम उतना मानते नहीं है, पर हम जब अपनी आंखों से कुछ देखते हैं और अपनी कानों से कुछ सुनते हैं तभी हमें विश्वास होता है. तो जब आंखों देखी चीज पे हम विश्वास ना करें ऐसा कैसे हो
1: सकता है. और जेनीता जी कैसे हैं? जेनीता महाराज जी, ओम चंद्रा जी, आप भी आगे चले. गीत में हम चलते हैं. इस गीत में हमारे साथ जितने लोग शामिल हैं हम सभी को याद करना चाहते हैं. आज हम थोड़ा गोल्डन एरा का सॉन्ग्स भी लेकर आते हैं क्योंकि जैसे जीबी जी ने कहा है कि रात का नशा अभी, कल रात का अंताक्षरी का नशा अभी तक उतरा नहीं है.

0: क्या वेलकम बैक टू रेडियो केजे लोकल. यू लिसनिंग टू अस ऑन प्लेन्स मीडिया 96.9. अब हम फेसबुक लाइव पर भी आ गए और काफी लोग हमारे साथ जुड़ गए और हम बात कर रहे हैं नोक जोक के बारे में. अच्छा क्रिश जी, आप बताइए कि हम आपको जानते हैं पिछले 5 साल से शायद, कितनी बार हम दोनों के बीच में नोक झोंक, लाइक सीरियस वाला झगड़ा, सीरियस
1: नोक झोंक
0: तो हमारा होता रहता है.
1: आई मीन डिसएग्रीमेंट्स होता है और अगर कभी झगड़ा हुआ भी है तो ऊपर वाले की दया से इंशाल्लाह कि हम लोगों का कुछ वो नहीं था इसमें. You know, some other disagreements. But the thing is कि कुछ ऐसा होता ही नहीं है. Like हम, I think हम दोनों अपने अपने अपने कामों में, अपने अपने लाइफ में इतने busy है. GB has got her own things to do. I've got my own things to do. And maybe that's why. Understanding भी आता है. But GB जी, आप

0: से हम इनको ट्रेन करके लाए थे, इसी तरह जवाब देना। सही जवाब,
1: सही जवाब, अच्छा आपको मिलता है 10 points। जी हाँ, एडवर्ड जी और रशीदा भाभी, फियोना, आप सभी ओकलैंड में। और चलिए जी, जी अम्मा का प्यारा सा मैसेज पढ़ लीजिए।
0: अम्मा कह रही है, मदर ऑफ बोथ द सिस्टर्स, या आई फील आफ्टर द फाइट यू बोथ बिकम मोर क्लोजर एंड क्लोजर, विच इज ट्रू। अम्मा, इवन इफ आई फाइट विद हर, आई कांट लाइक लेट हर गो, दैट्स द थिंग। लाइक
1: यू गाइस शुड फाइट मोर ऑफ्टन।
0: यस, डिसएग्रीमेंट, वेल वेल सेड क्रिश।
1: हाँ एग्जैक्टली, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, और डिसएग्रीमेंट किस बात पे होता है, बिकॉज जो जो लोग जीबी को जानते हैं, आई थिंक ये well, इसमें कुछ शर्म की बात नहीं, आई थिंक एज ह्यूमन, एज अ पर्सन, यू शुड एडमिट आप में जो क्वालिटीज है, अगर आप अपने अच्छे क्वालिटीज को एडमिट करते हैं, इसी तरह के आपको अपना फ्लोस को भी एडमिट करना चाहिए, और इसमें कोई शर्म नहीं है। फॉर मी, लाइक मैं 1000 लोगों के सामने, 20-25,000 लोगों के सामने खड़े होकर, आई कैन मेक फन ऑफ माय स्किन कलर, बिकॉज मुझे इसमें किसी शर्म, आई एम प्राउड ऑफ इट। इसी तरह से आई कैन प्राउड ऑफ माई एक्सेंट समटाइम, बिकॉज यू नो ग्रो अप। इसी तरह से एजुकेशन वाइज, जे बी हैज गॉट मास्टर्स, वेयर इज आई, मैं सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट हूँ। तो एजुकेशन होता है, तो जीबी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, काफी चीजों को लेकर शी इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, एंड यू कैन इमेजिन राइट, जो वो डिफरेंस। तो जो डिसएग्रीमेंट्स आता है, इज मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट, और वो अपने जगह पे सही है, क्योंकि शी वांट्स थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे, एंड मी बीइंग अ हाई स्कूल ग्रेजुएट, मेरा समझ उतना ही है। तो या,
0: एंड हमें भी लगता है कि जैसे कृषि ने कहा कि हमें हमारे फ्लॉज पे काम करना चाहिए, आई थिंक हमारा एक फ्लॉ भी वो है कि हम काफी स्ट्रक्चर्ड है, और हम काफी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड है, वो कभी कभी फ्लॉज भी हो जाता है। जिन लोगों को पता है कि जो परफेक्शनिस्ट है, जिनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, वो दूसरों से भी कहीं ना कहीं वही एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हर चीज उसी तरह होना चाहिए। बट आई थिंक कभी कभी हम जिस तरह कृष्ण ने कहा कि अपना फ्लॉस एक्सेप्ट करो, हम हमारा फ्लॉ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि दूसरा इंसान तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। यू नो, यू नीड टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट, यू नीड टू बी अ लिटिल बिट कॉमा।
1: आई एग्री ऑन दैट, क्योंकि जब इसमें घर की मामला, घर के बारे में बात आती है, तो घर के टाइडीनेस को लेकर आई एम द सेम, यू नो, मेरा घर को टाइडी देखने का माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द किड्स सी। तो समटाइम्स आई गेट एंग्री एट माय सन्स, बिकॉज यू नो मुझे एक तरह का चाहिए। सो या, बट आई थिंक जैसे अम्मा ने कहा, आई एग्री टू डिसएग्री, सबसे अच्छी बात यह होता है कि यू शुड बी एबल, यू शुड बी bold enough, that's the right word, bold enough to accept and admit your flaws. हाँ, मुझ में ये है।
0: हरजिंदर सिंह, आप हमारे साथ आ गए, या आप ऐसे ऐसे words लेकर आए हो, love, surrender, लगता है आज
1: फिर कुछ किया,
0: फिर आपको surrender करना पड़ा क्या, फिर कुछ किया,
1: फिर कुछ किया हमने। चलो, इस गीत में हम पीयूष जी हमारे साथ हैं, आपने इस गीत की फरमाइश की है। इस गीत में खासतौर पर से हम आपको याद कर लेते हैं, अमरजीत कौर जी, आपका, आप भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं पीयूष जी, और बाकी भी जितने लोग हैं, आप सभी को हम याद करना चाहते हैं। लिस्टिंग टू रेडियो के जे लोकल,
0: ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया 96.5।

0: जी हाँ बिल्कुल, छूकर मेरे मन को क्या तूने क्या इशारा। जग जी
1: जी,
0: प्यारा सॉन्ग द लाइट द लेजेंडरी किशोर कुमार की आवाज में। आज हमारे साथ कुछ लोग उधर फेसबुक के माध्यम से भी देख रहे हैं, जो अच्छे अच्छे सॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे आपको इन सॉन्ग्स के बारे में क्या आपको ऐसा लगता है कि गोल्डन एरा का जो सॉन्ग्स है ये रियली टच्ड पीपल एंड रियली टच्ड पीपल के दिलों को?
1: जी बिल्कुल, गोल्डन एरा के सॉन्ग्स, आजकल के सॉन्ग्स, लाइक हम खुद जेनरेशन, नया जेनरेशन है, इट्स नॉट लाइक वी आर लाइक 1970s या 60s, बट जब भी हम गोल्डन एरा के सॉन्ग सुनते हैं या पापा मम्मी के टाइम का सॉन्ग सुनते, इतना मीनिंगफुल लगता है। कृषि,
0: टोटली अग्री विथ यू, ये सॉन्ग्स इनकी बात ही कुछ और होती थी, एंड द वे इट वाज प्रोड्यूस्ड डन। और अभी देखिए, सिर्फ इन सॉन्ग्स का जो लिरिसिस्ट होते थे, वर्ड्स नहीं है, सॉन्ग्स का मीनिंग
1: जो अर्थ है वो इतना गहरा होता था, इट यूज्ड टू बी सो डीप,
0: म्यूजिक एंड ऑल एवरीथिंग अबाउट दिस सॉन्ग्स ना।
1: अम्मा, वी आर आल्सो सुपर एक्साइटेड टू, आई डोंट थिंक क्रिश जी एंड आई वुड गेट टू वॉच रामायण ऑन स्टेज बिकॉज वी विल बी बिजी बैक स्टेज, बट वी आर एक्साइटेड कि आप लोग सबको रामायण विटनेस करने को मिलेगा, जो हो रहा है 19th ऑफ सितंबर को, जो अराउंड 80-85 परफॉर्मर्स के साथ हम स्टेज पर लेकर आ रहे हैं। प्लीज स्प्रेड द वर्ड, क्योंकि आप लोग ही हमें हेल्प कर सकते हैं, ये काफी मेहनत कर रहे हैं 9 महीने का, एंड ऑल्सो रिमेंबर ये पूरा फ्री ट्रेनिंग है। हमारे तो अप्सराज यहाँ पर है, डांसर्स यहाँ पे है, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि 9 महीने का जो क्रू है वो फ्री में ट्रेन हो रहा है, जो ऑब्वियसली कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि विदाउट हमारे स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स के हम ये इनको प्रोवाइड कर ही नहीं सकते थे। पर इनकी मेहनत जो है, फ्री ट्रेनिंग का नहीं, इनका जो मेहनत है, कितने लोग बाल बच्चे वाले हैं एंड बच्चों को घर पर रखकर इस ठंड में भी वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। सो वी वुड लव यू टू स्प्रेड दिस वर्ड एंड वी वुड लव यू टू आस्क पीपल टू बाय द टिकट सो दैट वी कैन विटनेस समथिंग दैट हैज नेवर एवर हैपेंड बिफोर इन न्यूजीलैंड एज सच। ऐसा म्यूजिकल डांस ड्रामा रामायण का आज तक न्यूजीलैंड में कहीं नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक कोशिश है, ये एक विजन था जो कृषि और हमारे दिमाग में आया, हमारा कोर टीम है, एंड ये सिर्फ एक कोशिश है, जो कोशिश तभी सफल होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे।
0: यस, जैसे जीव जी ने कहा है कि ये जो प्रिपरेशन चल रहा है, अब सिर्फ हमारे इज यू नो इज डायरेक्टर्स इज द मेन पीपल इज द को टीम इज यही नहीं, पर जिस तरह से लोगों का जो सपोर्ट आ रहा है, हमारे किसी भी पार्ट ऑफ फिजी, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया, जब भी आप सुनते हैं हमारे रामायण के बारे में, यू कम फोर्ड एंड से यू नो बहुत बहुत आप इनक्रेज करते हो, सो डेफिनेटली। और हेलो गाइज, राम राम, वी आर डूइंग अ कीर्तन नाइट 18th of July को, जय हो। जी हाँ, याद रखिए हमारे यहाँ पर क्राइस्ट चर्च का जो सनातन प्रतिनिधि सभा ऑफ क्राइस्ट चर्च है, धीरेन जी, हमारे पंडित रूप जी, इनके साथ मिलकर ये दो आर्टिस्ट को लेकर आ रहे हैं सनातन सत्संग बॉयज क्राइस्ट चर्च 18th of July को टेम्पलटन हॉल से। ये हमारे यहीं क्राइस्ट चर्च के निखिल और इनके साथ साथ ओकलैंड से आने वाली रानी जी, इनके साथ जरूर ये स्टेज

0: होगा एंड वी लाइक टू विश यू गाइस ऑल द बेस्ट. पीयूष जी का मैसेज पढ़ लीजिए, फिर हम जाकर हरजिंदर सिंह का प्यारा सा सॉन्ग प्ले करेंगे.
1: पीयूष जी कह रहे हैं, कृषि आज आप वो सॉन्ग प्ले कीजिए जब आपने फर्स्ट टाइम जीबी जी को देखा था और आपके माइंड में आया था. आई डोंट थिंक आप वो सॉन्ग सुनना चाहेंगे वैसे.
0: बैंडर गई. चले इस गीत में हम याद करना चाहेंगे हमारे पाजी हरजिंदर जी और इनके साथ हमारे परजाई जी. आप दोनों को हम याद करना चाहते हैं इनके साथ साथ बाकी भी जितने लोग हैं. यू लिस्टिंग टू रेडियो केजे लोकल ओनली ऑन
1: प्लेन्स मीडिया 96.9. पीयूष जी, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं.

0: वेलकम बैक टू रेडियो केजे लोकल. आप सुन रहे हैं हमें प्लेन्स मीडिया 96.9.
1: जी हाँ, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं. बिल्कुल विकी, अगर जिन जिन लोगों ने मेरे कजन विकी को नहीं देखा होगा, गो फॉलो हिम ऑन टिकटॉक. SID SID,
0: the most handsome guy.
1: इस बाबू विद अग्री, राइट बाबू? बाबू सेंड मी अ इमोजी इस पे. अगर अग्री, इनसे ज्यादा हैंडसम बंदा आपने आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखा होगा. इज सो गुड लुकिंग. ये इतने गुड लुकिंग थे ना कि जब ये हमारे लोटका सिटी में जाते थे ना, तो बस टैक्सी पूरा शहर रुक जाता था. चलिए जीबी जी, बहुत अच्छा लगा सभी का साथ. हंसी मजाक अपने जगह पर. आज इन्हीं वोट्स के साथ हम आप सभी को अलविदा कहना चाहेंगे. मिलेंगे आपसे आने वाले फ्राइडे को. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. रेडियो केजे को जो सपोर्ट आप देते रहिए. कल शाम को हम, यानी कल सुबह, हमारे मंडे वीडियो के साथ वापस हमारे पेज पे. शालिनी जी आप भी हमारे साथ आ गई है. लता कुमार जी आपको भी जय श्री राम. सभी के साथ इन विथ योर वेरी वेरी गॉर्जियस आरजे जीबी के साथ, दिस इज आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ. एंड ऑफकोर्स आरजे जीबी आपकी तरफ से
0: बस बाय कहना चाहते हैं और फ्राइडे को मिलते हैं. हम थोड़े से खो गए थे. शालिनी गुप्ता जी का हरियाली तीज हो रहा है 22nd